0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: का उधार
1: श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 एफ।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी, उसके पीछे एक वजह है, खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा अमूमन कम होता है और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, इज फीलिंग गुड।
0: ओह रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
1: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है, लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मेंस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
0: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आए, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
1: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये बनना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
0: ओह ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
1: बहुत खुशी मिलती थी, जो हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ, मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है, नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
0: बयान ही किया जा सकता।
1: एग्जैक्टली, और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 FM। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ, और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट, जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लोग ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021, आरती त्रिवेदी। वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स के एक मीनिंग है, और खासकर जब उस पे म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है, तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है, या बिल्कुल खराब है।
0: तो इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड

0: आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो?
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं नहीं कर लेगी कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी जी।
1: उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई। मदर ब्रदर
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो?
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके ओके,
1: ऑब्वियस ही बात है। और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: सर मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है और वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं। अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग ही चल रहे हैं।
0: सॉरी मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों बातों में वो बात आएगी। अच्छा जी, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया दीदी मुझे मार दिया, मैंने कहा अभी बताती हूँ, उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड,
1: एक्जेक्टली।
0: देखिए मैं पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें, तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिसनर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिसनर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत
0: सेम हियर सेम हियर, आई हाय मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही है तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट द थिंग है, जो समाज का जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदी होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम सब स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का, जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको, संस्कार।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं जाता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है।
0: जी जी।
1: हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया है। कि अगर हम सोचो देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है, मतलब दिस एंड दैट। मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टेक्स्ट कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाए हुए हैं, थोड़ा सा मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है. मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गांव है. और सबसे बड़ी बात जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. एंड सी हमारा जो भारत है उसकी ज्यादातर जो
0: गांव
1: में बसते हैं,
0: राइट,
1: वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर. सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिल स्टिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट. एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट.
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है. और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे. संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ. और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है. हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं. दैट इज की फॉर देन द फैशन. अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का
0: नाम किया है,
1: बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस.
0: Exactly.
1: But still there are the, this is the society. Society is like that, na, ki in small cities and all, the parents don't allow, ki nahin, abhi nahin, this is not for you, you go for that. So that should be stopped.
0: ओके सो लिसनर्स, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं. कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे. सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई. आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: धन्यवाद.
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले हैं, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है, इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है, उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और एसएमएस इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुरा कर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एन्क्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवा कर बैंक खातों के ओटीपी प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुरुशादा 90.8 एफएम के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसें, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और कुछ समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित तो पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है। टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें? सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कीम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज

हैं वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं, पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं, बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें, अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी, बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है मॉर्निंग ओपीडी। और जैसा कि आप जानते हैं, सब कहते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और स्वस्थ रहने का सबसे पहला नियम यही माना जाता है कि आप अपने शरीर की साफ सफाई और उसकी स्वच्छता का पूरा ध्यान दें। लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए मौखिक स्वास्थ्य है, उसका भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मजबूत मसूड़े और स्वस्थ दांत अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर हम इसका सही से ख्याल रखेंगे तो हम दांत दर्द, दांतों का कमजोर होना, दांतों का पीलापन, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, बहुत सारी ये समस्याएं, इनसे हम निजात पा सकते हैं। अब कैसे पा सकते हैं, तो बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब ये बुनियादी बातें कौन सी हैं, तो इन्हीं बुनियादी बातों को विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले डॉक्टर ऋचा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार शशि जी, मैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से, और आज मैं आपसे बात करूंगी मौखिक स्वास्थ्य के बारे में। मौखिक स्वास्थ्य, वही जैसा शशि जी ने बताया, मौखिक स्वास्थ्य में हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य, हमारे दांतों का स्वास्थ्य, हमारे मुंह के अंदर जीभ, आसपास की मांसपेशियां, और हमारे ना सिर्फ मुंह बल्कि हमारे हेड एंड नेक रीजन में, यानी कि हमारे गले से लेके हमारे सिर तक के रीजन में जो भी मांसपेशियां हैं, जो भी रक्तवाहिनियां हैं, जो भी हमारी नर्व्स हैं, उन सब के स्वस्थ होने से ही एक पूरे ओरल हेल्थ की बात होती है। हम इसी के बारे में आज आपसे बातें करेंगे।
0: बिल्कुल, वैसे तो डॉक्टर ऋचा, हमने शुरुआत में ही प्रोग्राम में बताया कि जो मौखिक स्वास्थ्य है वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन अब हम आपसे जान लेते हैं कि आखिर मौखिक स्वास्थ्य से क्या मतलब होता है।
1: मौखिक स्वास्थ्य से जो हमारा तात्पर्य है वो ना सिर्फ मुंह के दांतों, मसूड़ों, आसपास के संबंधित संरचनाओं से है, बल्कि हमारे मांसपेशियों से भी है। और हम ये जानना चाहिए कि मुंह के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम खाना चबाते हैं, निगलते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम बातें करते हैं जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इन सब में हमारे मुंह का रोल है। तो मौखिक स्वास्थ्य का जो तात्पर्य है वो इन सब से भी है।
0: बिल्कुल, अब बात आती है डॉक्टर ऋचा यहाँ पर के जो भी सुनने वाले हैं आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद, अब वो कैसे अपना अच्छा मौखिक स्वास्थ्य बनाएं?
1: मौखिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक अच्छा मौखिक स्वास्थ्य होता क्या है।
0: बिल्कुल,
1: तो अच्छा मौखिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे दांत स्वस्थ रहें। उसके लिए हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि दांतों का काम क्या है, उसे हम सफाई कैसे कर सकें। दांतों की सफाई के लिए हमें ब्रश करना चाहिए, जैसे कि हम सब जानते हैं। मैंने देखा है कि हमारे जो मरीज भी आते हैं और हमारे लोगों से, कि दांतों की सफाई को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं कि जितना ज्यादा साफ करेंगे उतना ज्यादा साफ रहेगा, जितने ज्यादा समय देंगे, जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतना ज्यादा साफ रहेगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान ना दें। एक छोटा सा रूल है, या तो रूल कहिए, ट्रिक कहिए, एक छोटी सी सूक्ति कहिए जो मैं आपको देना चाहूंगी। दो मिनट के लिए साफ करना है, और 2 मिनट से ज्यादा हमें दांतों को नहीं देना है एक समय में। दिन में 2 बार साफ करें, 2 मिनट के लिए साफ करें। बिल्कुल ही मुलायम से दांतों के ब्रश जो होता है, बिल्कुल मुलायम से ब्रश वाले से हम उसको साफ कर सकते हैं। और 2 मिनट इफेक्टिव ब्रशिंग होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि 2 मिनट के लिए कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव ब्रशिंग कर रहे हैं। हम दांतों के हर परत पे ध्यान दें, हर सतह पे ध्यान दें, उसको साफ करें। ये तो हुई हमारे दांत साफ करने की बात। फिर आते हैं मसूड़ों की स्वास्थ्य। मसूड़ों को स्वास्थ्य को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हम ध्यान देंगे कि हम अपने मसूड़ों को भी, अगर हम उसमें कोई परिवर्तन देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि मसूड़े हमारे लाल पड़ रहे हैं, मसूड़े में सूजन आ रही है, मसूड़ों में सड़न आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मसूड़ों से कुछ नमक सा पानी का रिसाव हो रहा है, या हमें लग रहा है कि उसमें कुछ छाले पड़ रहे हैं, हम तुरंत उस पे कोई ना कोई ध्यान दें और अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और उसकी सफाई करवाएं। साथ में अगर हमें दांतों में पीलापन लग रहा है तो भी हम उस पे ध्यान दें, क्योंकि ये सारी चीजें एक खराब स्वास्थ्य की निशानी है। दांतों का पीलापन होना, मसूड़ों का खराब होना, कई बार और हमने क्या देखा है कि दांत हमारे हिलने लगते हैं, तो अगर दांत हिल रहे हैं तो ये भी हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य की वजह से हिल रहे हैं, तो हम उस पे भी ध्यान दें। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम घर पे ही ध्यान दे सकते हैं और अपने मुख के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, और भी बातें आज हम आपसे करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जल्दी से लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, और आज का जो हमारा विषय है मॉर्निंग ओपीडी का, वो है मौखिक स्वास्थ्य यानी कि ओरल हेल्थ। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में। हम बात कर रहे थे डॉक्टर ऋचा अभी दांतों की, तो एक समस्या अक्सर लोगों के सामने आती है कि कितना भी वो महंगे से महंगा मंजन ले लें, टूथपेस्ट ले लें और कितनी बार ब्रश कर लें, लेकिन दांत उनके पीले ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दांत एकदम मोती से चमकते हैं, चाहे वो ब्रश कर रहे हैं या ना करें, मसूड़े उनके एकदम से नीट एंड क्लीन होते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं आपसे बस एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि हमारी त्वचा के रंग में भी भेद होता है
0: जी,
1: हर कोई गोरा होना चाहता है नहीं हो सकता, कुछ लोग जो गोरे हैं वो गेहूं होने चाहते हैं नहीं हो सकते, इस तरीके से दांत भी है। दांतों का जो रंग है वो सिर्फ गंदगी की वजह से परिवर्तित नहीं होता है, जो गंदगी की वजह से परिवर्तित हो रहा है जिसको हम स्टेन्स कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो स्टेन्स का होना एक अस्वस्थ दांत को दर्शाता है। लेकिन अगर हमारे दांतों का कलर स्वाभाविक रूप से डल है बट वो सारे दांतों में एक जैसा है, जैसे कुछ लोगों के दांत हल्के पीले होते हैं लेकिन वो सारे ही दांत हल्के पीले हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक या दो दांत हल्के पीले हैं, तो हम उनको उनका स्वाभाविक रंग भी मान सकते हैं। कई स्टडीज में, कई शोध में देखा गया है जिन व्यक्तियों का जो त्वचा का रंग अगर ज्यादा साफ है तो उनके दांत हमें हल्के पीले समझ में आते हैं, एक तरीके से रिलेटेबल कलरिंग भी है। और जो व्यक्ति थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, गेहूं होते हैं, उनके दांत हमें ज्यादा सफेद लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक रिलेटिव चीज भी है। हाँ, लेकिन अगर ये जो रंग है वो अस्वस्थ होने की वजह से है, हमारे चाय कॉफी या बीड़ी तम्बाकू इनकी वजह से जो हमारे स्टेन्स लग जाते हैं ये सब है, तो इनकी हम सफाई करवा सकते हैं और डे टू डे में इनका ध्यान रख सकते हैं।
0: दांतों की सफाई की आपने बात की, जैसे लोग अपना यानी कि बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और भी शरीर में बहुत सी चीजें उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन दांतों का उतना ख्याल नहीं रखते, तो इसकी क्या वजह है?
1: ये भी बिल्कुल सही बात है। जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण वजह समझ में आती है, हम जैसे ही मिरर के सामने जाते हैं, शीशे के सामने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो हमारे चेहरे को, हमारे बालों को, हमारे कद कांठी हर चीज का नोटिस करता है और उसके बारे में बताता है या हम उसके बारे में देखते हैं। बट दांतों में क्या होता है, जब हम बोलते हैं तभी हमें हमारे दांत दिखते हैं, जब हम खाते हैं तभी हमें हमारे दांत दिखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने शारीरिक अंगों का ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि हाथ में दर्द है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर दर्द है, तो हम दांतों को एक मानसिक रोग से भी उसको हम बुरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये एक ज्यादा कारण हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे दांतों का भी ख्याल वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम बाकी चीजों का ख्याल रखें।
0: बिल्कुल। और आपने बात की दांतों की सफाई की, क्लीनिंग की, तो कितने समय बाद व्यक्ति को अपने दांतों की सफाई करवाना बहुत जरूरी है?
1: व्यक्ति को सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हर 6 महीने में अगर वो एक स्वस्थ मुख के साथ है, एक बिल्कुल हेल्दी ओरल कैविटी के साथ है, फिर भी उसे हर 6 महीने में अपना चेकअप कराना चाहिए जिसे हम जनरल ओरल हेल्थ चेकअप कहते हैं। वहाँ पे अगर आपके डॉक्टर को, आपके डेंटिस्ट को लगता है कि आपके दांतों में कोई कमी है, कोई खराबी है, तो आपको खुद ही बताएंगे क्या इलाज आपको कराना है। अगर फिर भी आपका कंसर्न है, आपकी ये चिंता है कि दांतों में पीलापन है या कुछ है, तो आप 6 महीने साल भर में उसकी सफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी आदतें हैं जैसे कि बीड़ी तम्बाकू का सेवन करना, आपको ज्यादा कैफीन का सेवन करना जिसकी वजह से दांत खराब हो सकते हैं, तो आपके विजिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आप हर 3 महीने में भी आके एक डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि कम से कम 6 महीने बाद अपने दांतों का जो क्लीनिंग है जरूर करवा लें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहे। तो जरूर आगे भी और भी बातें आपसे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। जल्दी से लौट के आते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग ओपीडी और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ की, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य की। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर ऋचा मिश्रा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैडम हम बात कर रहे थे कि जो दांतों की क्लीनिंग है कब कब करवानी चाहिए। एक और समस्या दांतों में देखने को ज्यादा मिलती है वो है पारिया की। तो इसकी क्या वजह है और कैसे इस बीमारी से निजात कोई भी पा सकता है? आमतौर पर बहुत ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है।
1: जी, पारिया जो आप बीमारी की बात कर रहे हैं ये वस्तुतः एक मसूड़ों की बीमारी है। ये जो इसमें खून आ जाना और हम कुछ भी खाते हैं उसमें हमें खून का इम्प्रेशन दिखता है तभी हमें समझ में आता है कि खून आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये होता है मसूड़ों के अस्वस्थ होने की वजह से। जब हमारे मसूड़े अस्वस्थ होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनका रंग बदल जाता है, तो इसकी वजह से जब भी हम कुछ खाते हैं तो उनमें एक दबाव उत्पन्न होता है। और मसूड़े हमारी एक ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं अपने मुख के अंदर का जिनमें ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है और हम जैसे ही कुछ खाते हैं वो सूजन की वजह से वहां पे खून निकल आता है और वो हमें किसी भी पदार्थों में दिखता है। तो बेसिकली खून आना पायरिया है, लेकिन इसके साथ साथ में जो भी व्यक्ति पायरिया से पीड़ित है उसके मुंह से आपको एक गंदी सी बदबू भी महसूस होगी। और क्या होता है पायरिया में, पायरिया में हमारा क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आने की वजह से जो मसूड़ों की पकड़ होती है दांतों में वो ढीली पड़ जाती है। तो इस वजह से हम जिस व्यक्ति को पायरिया है उसके दांत भी हिलने लगते हैं। तो ना सिर्फ खून आना बल्कि दांत हिलना, मसूड़ों की पकड़ कमजोर होना, बदबू आना और जरूर ये खून आना, ये पायरिया के कुछ लक्षण है जो कि बताता है कि आप अस्वस्थ हैं, आपका मुख अस्वस्थ है।
0: तो लक्षण आपने बता दिए, अब इससे छुटकारा कैसे मिला? अगर किसी व्यक्ति को ये सारे लक्षण हैं और वो इससे छुटकारा पाना चाहता है तो कैसे छुटकारा पा सकता है?
1: इससे छुटकारा पाने का बहुत ही आसान सा तरीका है जी। सबसे पहले जो हमने बात की कि पहले तो आप हर 6 महीने में अपने आप का जांच कराएं। कोई बीमारी का छुटकारा हम तभी पाते हैं जब वो हो जाती है। अगर हम एक रेगुलर चेकअप कराएंगे उस बीमारी को होने ही ना दें, सबसे बड़ा छुटकारा तो यही है। क्योंकि देखिए ये सिर्फ हमारे अज्ञान की वजह से या हमारा ध्यान ना देने की वजह से नहीं हो रहा है। अगर हमारे शरीर में कोई और भी बीमारी है, मैं आगे आपको बताना चाहती थी तो मैं अभी आपसे ये डिस्कस करती हूँ। हमारे शरीर की कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे मुख में ये सारी कंडीशंस, जैसे आप पायरिया कह रहे हैं, दांतों की बीमारियां, इनको उत्पन्न करती हैं। ये एक अपने आप में तो बीमारी है ही पर शरीर के बाकी बीमारियों का भी एक परिचायक है। तो अगर आपकी उन वजह से भी अगर ये हो गई है तो पहले तो हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, जड़ से हम अपनी बीमारी को खत्म करते हैं। अगर ये किसी और की बीमारी की वजह से है

0: कि हम कहते हैं जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको मुख की बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो हम मधुमेह को पहले इलाज करेंगे, उसको कंट्रोल में करेंगे तो अपने आप ये बीमारियां कंट्रोल में आएंगी, पायरिया हो गया और भी चीजों को हम पहले हम रूट कॉज को ट्रीट करेंगे, यानी अपने जड़ से ट्रीट करेंगे।
1: बिल्कुल, तो कहने का मतलब आपका यही है कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई है, अगर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आगे भी आपसे बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग ओपीडी और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में। बहुत सारी बातें आज आप जान चुके हैं अब तक, और आपको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है मौखिक स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में। अभी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे आपसे कि जो पारिया है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। एक आम समस्या और बहुत ज़्यादा होती है दांतों के दर्द की, डाढ़ के दर्द की। दर्द हो गया डाढ़ में तो वो सहते चले आ रहे हैं सालों से, कोई गोली खा ली जब तक उसका असर रहता है दर्द बंद हो जाता है।
1: देखिए दांत में दर्द तो दांत में दर्द तभी होगा जब दांतों में सड़न होगी। अब दांतों में अगर मैं आपको ज्यादा गहराई से बताऊं तो दांतों की परतें होती हैं, तो दांतों की जो सड़न होती है वो ऊपरी परत से स्टार्ट होती है और अंदरूनी परत तक जाती है। दर्द तब तक नहीं होगा जब दांत की अंदरूनी परत में वो सड़न पहुंचेगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हमें कभी भी दांतों में खाना फंसा या हमें दर्द के पहले आपको क्या संकेत मिलेगा, दर्द के पहले आपको झनझनाहट होगी, खाना फंसेगा आपके दांतों में, या कभी आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं या दांत देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक होल भी दिख सकता है, काले कलर का एक धब्बा भी दिख सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ आपके दांतों में आप नोटिस कर सकते हैं।
0: तो उसको लोग कहते हैं कि कीड़ा लग गया दांत।
1: हाँ जी, कीड़ा लग गया। तो ऐसी कोई भी चीज आप देखते हैं तो आप तुरंत उसके इलाज के लिए एक डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ आप दर्द की कंडीशन को बचा सकते हैं। बट चलिए, हो सकता है कि आपको दर्द पैदा हो गया। दर्द होने के बाद का इलाज ये होता है, जरूरी नहीं कि आप दांत को निकलवाएं। दांत को निकलवाना आपका कोई इलाज नहीं है, एक तरीके से ये अंतिम इलाज है। जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो हम दांत को निकलवाते हैं। दांत को निकलवाने से पहले दर्द होता है तो हम रूट केनाल ट्रीटमेंट एक इलाज होता है जिसके द्वारा अपने दर्द वाले दांत को बचा सकते हैं। इस इलाज से हम अपने दर्द को भगा सकते हैं, क्योंकि दर्द क्यों हो रहा है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है। हम रूट केनाल ट्रीटमेंट से उस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, पूरी तरीके से दांत के अस्वस्थ पार्ट को निकाल देते हैं और वहां पे आजकल के जो भी फिलिंग मटेरियल्स हैं, जो भी भरने वाले पदार्थ हैं, उनको भर के उसको पूर्णतया स्वस्थ करते हैं, उसको एक तरीके से मजबूती देते हैं और दर्द को तो हम हटाते ही हैं, साथ साथ जो नेचुरल दांत है, स्वाभाविक दांत है, उसको भी बचा लेते हैं।
0: तो बहुत ही ये अच्छी, ये आपने टेक्नोलॉजी की बात की, जो RCT की बात आपने की है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, तो कितने समय में ये कम्प्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है?
1: जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, जो अस्वस्थ पार्ट है दांत का
0: जी,
1: है ना, जो अंदरूनी लेयर है जिसको हम अपने भाषा में पल्प कहते हैं, तो जो अस्वस्थ पार्ट है उसको हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए हमें कम से कम जो न्यूनतम समय लगता है वो 3 से 4 बार की सिटिंग लगती है। कई दांत होते हैं जिनमें इन्फेक्शन बहुत कम होता है, उसको हम 1 से 2 सिटिंग में भी हटा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो एक स्टैंडर्ड सिटिंग है वो 3 से 4 सिटिंग लगती है, जिसमें हम दांत के अस्वस्थ पार्ट यानी पल्प को हटाते हैं और साथ में हम वहाँ पे एक फिलिंग मटेरियल होता है उसको भर के, उसको वहाँ पे करके सील करके आपके दांत को फिर से एक मजबूती प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी ये टेक्नोलॉजी है RCT, और अपने हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर आपके दाढ़ में, दांत में दर्द होता है तो उसको यूं ही ना उखड़वाएं, क्योंकि RCT के जरिए आपकी जो दाढ़ है वो बच सकती है। और मैडम ऐसा भी होता है कि आपने बीच में से कोई दाढ़ या दांत उखड़वा दी, फिर आसपास की जो दांत है वो भी कमजोर हो जाते हैं?
1: देखिए होता है ऐसा कि एक दांत निकलवाने से आसपास के दांत कमजोर नहीं पड़ते, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, आसपास के दांतों में भी इन्फेक्शन जो आप कह रहे हैं होता है, वो कब होता है, जब हम अपने एक पर्टिकुलर दांत का हमने ध्यान नहीं रखा और इन्फेक्शन बहुत ही गहराई तक जा चुका है। वो जो दांतों के क्राउन एरिया यानी मुकुट एरिया जिसको हम कहते हैं, ऊपरी एरिया जो हमें मुंह में दिखता है, उससे लेके उसकी जड़ तक चला गया है, और जड़ के बाद आसपास के जो भी हमारे आपके आसपास के स्ट्रक्चर हैं, लाइक जो हमारी बोन है, हमारी हड्डी है जिसमें दांत है, हमारे आसपास के मांसपेशियां हैं, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, वहाँ चला गया है, तो फिर वो हमारा इन्फेक्शन फैला सकता है। वहाँ ज़रूर हड्डी को भी नुकसान पहुँच सकता है, आसपास के दांतों को भी नुकसान पहुँच सकता है, ये आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इलाज यही है कि जितने जल्दी से जल्दी जो हमारा दांत है उसको सही करवाएं, और अगर आसपास के दांतों में भी कोई खराबी उत्पन्न हो रही है तो उसका भी इलाज कराएं।
0: बिल्कुल, और यहाँ पर एक और बात आपसे जान लेता हूँ, ये भी इसी से जुड़ी हुई है कि कई बार देखा जाता है कि दांतों में झंझनाहट हो रही है, ठंडा पानी लगता है, तो वो भी क्या कीड़े की वजह से है?
1: दांतों में जो झंझनाहट है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, उसके कई कारण हो सकते हैं, कीड़ा लगना भी एक कारण है। लेकिन उसके कई कारण हैं, जैसे जब एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे हम बचपन से दांत से खाना चबाते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे दाढ़े होती हैं, जिनको हम आप जाढ़े बोलते हैं, दाढ़े बोलते हैं, हमारे जो मरीज होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, भोजन को चबाना। तो चबाते चबाते क्या होता है, दांतों में ऊपरी सतह घिस जाती है। तो जब ऊपरी सतह घिस जाती है तो भी ये झंझनाहट उत्पन्न होती है, एक कारण ये है। दूसरा कारण दांतों में कीड़े लगना, जो आपने कहा। एक और कारण इसका क्या है, अगर किसी वजह से, किसी कारण से हमारे दांतों की जो ऊपरी सतह है वो फ्रैक्चर हो गई। इसका एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, लोगों को आदत है सॉस की बोतल खुद दांत से खोलना, है ना। तो उससे क्या हुआ, हमने सॉस की बोतल दांत से खोली, हमारे दांतों का जो ऊपरी परत थी वो टूट गई, वहां भी आपको झंझनाहट और ये ठंडे गर्म की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ चीजें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ऊपरी सतह का जाना, अगर जो ऊपरी सतह है, पहली सतह जिसको हम इनेमल बोलते हैं, अगर वो हमारी किसी भी कारण से जा रही है और हमारा जो डेंटीन है, जो सेकेंड दूसरी सतह है, वो एक्सपोज हो रही है, तो हमें झंझनाहट ठंडा गर्म जरूर लगेगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने आदत की बात की, तो आदत की बात से मुझे याद आता है कि मान लीजिए कहीं पर कोई भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है, और भी चीज़ें होते हैं, तो लोग उस वक्त भूल जाते हैं कि पहले ठंडी खा ली, फिर गर्म खा ली, फिर ठंडी खा ली, गर्म खा ली, तो वहाँ पर कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए?
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बात ऐसी है कि ठंडी खा ली, गर्म खा ली, इन चीज़ें इतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपके दांत स्वस्थ हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति है जिसको दांत में कोई दिक्कत नहीं है, कभी झंझनाहट की दिक्कत नहीं हुई, कभी ठंडे गर्म की दिक्कत नहीं, वो अगर ऐसी चीज़ें खा रहा है महीने में एक आध बार या जिसको हम ओकेजनल चीज़ें कहते हैं, उससे इतना ज़्यादा फर्क दांतों में नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पहले से ही अस्वस्थ हैं दांतों को लेके, पहले से ही आपको झंझनाहट की शिकायत है, पहले से ही आपके सड़न की शिकायत है, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मुझे ठंडी चीज़ से झंझनाहट हो रही है तो मैं उसको ना लूँ, गर्म चीज़ से हो रही है तो मैं उसका ध्यान रखूँ। बस जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे हमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है।
0: बिल्कुल, तो आगे भी आपसे बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक और म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग ओपीडी और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में। बहुत सारी बातें आज आप जान चुके हैं अब तक, और आपको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है मौखिक स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में। जो अपने दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, अपने मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रखना

बीच में फंस रहा है, एक आध बार फंस रहा है ठीक है, अगर नियमित तौर से फंस रहा है तो वो मसूड़ों में जाएगा, मसूड़ों को सड़ाएगा, पायरिया होगा, यानी आपकी फिर ये जो साइकिल है वो बढ़ेगी। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि आप फ्लॉसिंग के थ्रू, फ्लॉस क्या होता है, एक डेंटल थ्रेड्स होते हैं, तार जैसा होता है जिसमें डेंटल जो एक आपके मुंह से बिल्कुल ही वो फ्रेंडली होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नुकसानदायक तार होता है, एक तार होता है जिसमें मेडिसिन होती है, उसको आप फ्लॉस कर सकते हैं, उसके थ्रू हम आपके दांतों के बीच की जो गंदगी उसको साफ कर सकते हैं। तो दूसरा, ये फ्लॉसिंग की टेक्निक यूज करें। आप माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं, माउथ वॉश को डाइल्यूट करके पानी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ये एक टेक्निक अपनाएं। और तीसरी जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है वो ये है कि आप जब भी खाना खाएं या कुछ भी खाएं, खाना खाएं, नाश्ता करें, आप बीच के छोटे मोटे स्नैकिंग कर रहे हैं, आप बस पानी से अच्छे से कुल्ला करें। इससे क्या होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ आपके दांतों में चिपक गया है, फंस गया है, वो वहीं पे निकल जाएगा, और जब आप सुबह शाम ब्रश करेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो आप आसानी से निकाल सकते हैं।

0: तो डॉक्टर ऋचा, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी हमारे श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से दी, और आपकी जो बताई गई बातें हैं उनका हमारे सुनने वाले जरूर ध्यान रखेंगे, ध्यान ही नहीं रखेंगे बल्कि अपने जीवन में उनको अपनाएंगे भी। चलते चलते अगर आप और कुछ कहना चाहें, हो सकता है हमसे कोई बात रह गई हो और आप उसको बताना चाहती हो, तो आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं मौखिक स्वास्थ्य के बारे में।
1: वैसे तो हमने मौखिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक बात मुझे और आपको जरूर बतानी है जो कि आपके मौखिक स्वास्थ्य से ज्यादा आपके बाकी स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगी, वो है तम्बाकू सुपारी इनका सेवन। आप तम्बाकू सुपारी इन सब का सेवन पूरी तरीके से बंद करें। अगर आप सेवन कर रहे हैं, कोई आपके आसपास परिजन या आपके भी मित्र मंडली में सेवन करता, उसको बंद करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके दांतों को सड़ाएगा, आपके मसूड़ों को सड़ाएगा, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी उत्पन्न करेगा। जब आप तम्बाकू का सेवन करेंगे, चाहे वो खाने के लिए या फिर स्मोक करने के लिए, वो आपके मुंह का कैंसर भी कॉज करेगा। साथ में अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको लंग कैंसर और ऐसी बीमारियां भी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो हम मेरा आप सबसे एक यही विनती है कि स्वस्थ रहें, अपने मुंह को स्वस्थ रखें। आपका मुख स्वस्थ रहेगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप मुस्कुराएंगे, अच्छी पौष्टिक और स्वादिष्ट चीजों का स्वाद ले पाएंगे, साथ ही साथ अपने मस्तिष्क रोग से भी बाहर आ पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी, और जरूर हमारे श्रोता इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
2: सागर में
3: तरंग है,
2: सूर्य किरण के
3: संग है,
2: डोर के साथ
3: पतंग है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

हैं इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनू शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं वही आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज के समय में एक बड़ी समस्या का सामना हमारे ग्रामीण बहन भाई कर रहे हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाता है, और रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो रोजगार के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं। अब शहर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी रोजगार पाना इतना आसान नहीं होता है, ऐसी जगह रहना पड़ जाता है कि बहुत घनी आबादी है, मलिन बस्ती है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में संक्रामक बीमारियों के फैलने का चांस ज्यादा होता है, और कई बार ऐसी जगह काम करना पड़ जाता है जहाँ 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, और ऐसे में कब खाना खाना है, कब बनाना है, कब सोना है, कब जागना है, सारी जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा जाती है, और इन सब का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से आप अस्वस्थ होने लग जाते हैं। अब इतना पैसा शहर में आके कमाया वो सब आपके स्वास्थ्य पर लग गया, बचा क्या, और कई बार तो स्वास्थ्य ठीक भी नहीं होता और कर्ज भी हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है कि किस तरह से हमारे जो युवा हैं या अन्य ग्रामीण बहन भाई हैं वो गांव में रहकर ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि अपने गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान के साथ साथ उनको रोजगार भी मिले। तो ऐसे में हमारे जो युवा साथी हैं उनको स्थानीय स्तर पर आज की जो मांग है उसके अनुसार आप कोई ना कोई कौशल जरूर सीखें, और साथ ही साथ आजकल तो डिजिटल तकनीकों का जमाना है तो आप इसका प्रयोग भी प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय युवाओं को हमारे कृषि आधारित उद्योगों जैसे डेयरी, प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर गांव में ही आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब स्थानीय स्तर पर हम कौशल विकास की बात करें तो कोई ना कोई कौशल विकास सेंटर आपके आसपास जरूर होगा, तो वहां पर आप अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण ले सकते हैं और फिर कार्य कर सकते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, मशीन का रखरखाव है, और सिलाई है, कढ़ाई है, ये सारी चीजें आप सीख करके अपने गांव के आसपास गांव में ही रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो युवा साथी हैं वो CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जन सुविधा केंद्र खोल सकते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा आपका रोजगार हासिल हो जाता है। लघु और कुटीर उद्योग की बात करें तो गांव में छोटे उद्योग जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, पापड़ या जूट के उत्पाद, जिससे स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिल सके। और अब बात करें हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की, तो खेती के अलावा डेयरी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्र में भी हमारे युवा प्रशिक्षण पा करके रोजगार हासिल कर सकते हैं और इससे साल भर आमदनी कर सकते हैं। तो जरूर इस तरफ युवा साथियों आप ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं का छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है, तो इस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं, ग्रामीण बहन भाई हैं, उनका पलायन गांव से रुक सकता है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही कि हुनर से कैसे हम रोजगार अपने गांव में हासिल कर सकते हैं और कैसे गांव से पलायन को रोक सकते हैं, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
0: हाँ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: ना शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
1: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
0: सच्ची? ये ऐसे

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: से मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा।

90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के

निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

बेहतरीन, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और TV प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की

देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरों शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।